0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

0: आकाशवाणी FM गोल खांटी सोना।
1: प्रभातेर आलोए रांगा प्रभात बिना, प्रभात बिना सुनछेन 100.1 FM गोल्डे। प्रभात बिना, प्रभात बिना 100.1 FM गोल्डे।

दोस्तों, पर्वत के इस पार से आती यह सुरीली ताल और सुबह की पहली ताजी हवा वाकई मन को एक नई ताजगी और नई उम्मीद से भर देती है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के बिल्कुल मन पसंदीदा कार्यक्रम यानी कि सुहानी सुबह में। और मैं हूँ आज आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति। तो दोस्तों, जैसे इस गीत ने हमें पहाड़ों और वादियों की ताजगी से रूबरू कराया, ठीक वैसे ही आज का ये पूरा सफर भी बेहतरीन नगमों और मीठी बातों और साथ ही साथ ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा से सरोवर रहने वाला है। तो बस थाम लीजिए अपनी चाय की प्याली और हमारे संग हो जाइए तैयार, क्योंकि आज के दिन को और भी हसीन बनाने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि कार्यक्रम सुहानी सुबह में सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। और दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपके अपनी दोस्त ज्योति। तो दोस्तों, बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला है ठीक सुबह के 8 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

तो दोस्तों लता जी की रेशमी आवाज और वादियों से पुकारती ये दिलकश धुन सीधे दिल में उतर जाती है। अपनों का इंतजार और उनसे जुड़ने की ये कशिश वाकई इस सुबह को और भी भावुक और सुहानी बना देती है। लेकिन अपनों के इस पुकार के साथ साथ दुनिया की हलचलों से जुड़े रहना भी उतना ही जरूरी है। सुबह की चाय की चुस्की के बीच ये जानना भी लाजमी

रश्मि है कि आज देश और दुनिया में क्या कुछ खास घट रहा है। तो चलिए गीतों के इस हसीन सिलसिले में लेते हैं एक छोटा सा ठहराव और रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। तो दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट का नौकरी पेशा कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया गया है। जी हाँ, केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक में, यानी कि कल के जो अहम बैठक में ईपीएफ और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए सैलरी लिमिट को 15,000 से बढ़कर 25,000 प्रतिमाह कर दिया गया है, जो 17 सितंबर से लागू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब बेसिक प्लस डीए मिलाकर जिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 25,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, उन्हें अब अनिवार्य तौर पर पीएफ के साथ ही ईपीएस यानी पीएफ पेंशन में भी योगदान देना होगा। पहले ये लिमिट 15,000 रुपए थी। और दोस्तों, दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इसे बुधवार को इस बात की घोषणा की गई और 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अनंत नाग को पुरस्कार दिया जाएगा। अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म में जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलांगी की महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 7:17 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी सुबह अभी ज्योति के साथ। तो दोस्तों, बातों और गीतों का सिलसिला यूं ही चलने वाला ठीक सुबह की 8 बजे तक, तो आप कहीं मत जाइए, यूं ही सुनते रहिए। जी हाँ, अपना पसंदीदा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड, खरा सोना पर। तो चलिए दोस्तों, अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

तो चेतन से अगली खबरों की ओर रुख करते हैं कि स्वच्छता ही सेवा अभियान का 10वां संस्करण गुरुवार से पूरे देश में शुरू हो जाएगा। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देश भर में लाखों लोगों को सामूहिक रूप से स्वच्छता अभियानों के लिए प्रभावी रूप से प्रेरित करना है और इस वर्ष की थीम स्वच्छता में सहभाग स्वच्छ भारत विकसित भारत रखी गई है और साथ ही साथ इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बुधवार को राष्ट्रीय मीडिया द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इस बात की घोषणा की। और आगे बढ़ूं खबरों में तो दोस्तों तो चलती हूं शेयर बाजार की ओर। जी हां, घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को सेंसेक्स 332.63 अंक यानी 0.45% बढ़कर 74,336.45 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 99 अंक यानी कि 0.43% चढ़कर 23,217.60 पर पहुंच गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध आधार पर 2,977.86 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। तो चलिए दोस्तों खेल की खबरों की ओर रुख करते हैं। जापान पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम। जी बिल्कुल, हाल ही में T20 एशिया कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियाई खेल 2026 में अपने अभियान के लिए जापान पहुंच गई है। गत चैंपियन भारतीय टीम की नजरें हांगझोऊ में 2023 में जीते स्वर्ण पदक को बचाव करने पर है। और दोस्तों अगर आगे बढ़ूं तो बताऊं कि स्वर्ण पदक बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी भारतीय महिला कबड्डी टीम। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम अपने स्वर्ण पदक को बचाव करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। कप्तान पुष्पा राणा और अर्जुन पुरस्कार विजेता पूजा काजला ने टीम की तैयारियां पर भरोसा जताते हुए कहा कि भारतीय टीम का लक्ष्य शीर्ष स्थान हासिल करना है। तो दोस्तों और लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना में वापसी के 6 अक्टूबर को होगा विदाई मुकाबला। जी हम, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा के कुछ सप्ताह बाद दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को अक्टूबर में होने वाले मैत्री मुकाबले के लिए अर्जेंटीना की टीम में शामिल किया गया है और अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के अध्यक्ष ने यह पुष्टि की है कि मेसी को राष्ट्रीय टीम के लिए विदाई मुकाबला खेलने का निमंत्रण दिया गया है। तो दोस्तों आज की ताजा खबरें यही तक। और स्टूडियो में समय हो रहा है 7:24:30, लेकिन बातों का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए बातों और गीतों में ढेर सारी लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

0: एक आवश्यक सूचना। डाक अदालत अधीक्षक RMS SP मंडल की अध्यक्षता में RMS SP मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक RMS SP मंडल कार्यालय 2MG रोड हावड़ा चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन 7101 में गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में RMS SP मंडल से संबंधित RMS सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल आईडी है rmssbdn@gmail.com। इस ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें और इसके माध्यम से अधीक्षक RMS SP मंडल हावड़ा 7111 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हो। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक से दूरभाष संख्या 0332641 5949 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामलों और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

वाह, किशोर दा की ये बेपरवाह मस्ती और अमिताभ बच्चन का वो अंदाज और सफर की ये रफ्तार, बिल्कुल वाकई सुबह सुबह जब ऐसी एनर्जी मिल जाए तो दिन की गाड़ी अपने आप सर पर दौड़ने लगती है। पर भाई, सफर में निकलने से पहले सिर्फ गाड़ी की रफ्तार ही नहीं, आसमान का मिजाज भी भांप लेना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे निकल पड़े और ऊपर से बादलों की टोली बरस पड़े। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के मौसम के हाल पर। तो दोस्तों, आज आसमान पर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और कल का जो अधिकतम तापमान नापा गया था वो था 34.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सामान्य से 2.0 डिग्री ज्यादा, और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस यानी कि सामान्य से 2.2 डिग्री ज्यादा, और अधिकतम आर्द्रता थी 97% और न्यूनतम आर्द्रता थी 52%। और दोस्तों, जब मौसम में ऐसी हल्की फुल्की फुहारे हो, फिजाओं में ताजगी घुली हो, तो ऐसे हसीन मंजर के लिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता। तो बस मौसम के इस खूबसूरत मिजाज को महसूस कीजिए और डूब जाइए लता मंगेशकर जी की मखमली आवाज में सजे इस सदाबहार तराने में।

दोस्तों, कैलेंडर का हर पन्ना अपने साथ कुछ खास पैगाम लेकर आता है और आज है 17 सितंबर का ये दिन। हमें दो बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों की याद दिला रहा है। एक तरफ आज देश भर में धूम है विश्वकर्मा जयंती की। भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें संपूर्ण सृष्टि का पहला शिल्पी और वास्तुकार माना जाता है, और आज का दिन उन सभी हाथों को सलाम करने का है जो अपनी मेहनत, हुनर और औजारों से हमारे देश की तरक्की की नींव करते हैं। चाहे कल कारखाने हो, मशीन हो या कोई छोटा सा औजार, ये पर्व हमें काम के प्रति समर्पण और निष्ठा सिखाता है। और दिलचस्प बात देखिए, जहां विश्वकर्मा पूजा निर्माण और साधनों के सटीक इस्तेमाल का संदेश देती है, वहीं आज पूरी दुनिया मना रही है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। एक तरफ ईंट पत्थर और मशीनों का निर्माण, तो दूसरी तरफ कुदरत की सबसे नायाब कृति इंसानी जीवन की हिफाजत। मरीजों की सुरक्षा का मतलब सिर्फ दवाएं या डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित, संवेदनशील और सजग माहौल है, जहां हर जिंदगी की कद्र हो। यानी बात चाहे कल कारखाने की, मशीनों की हो या स्वास्थ्य सेवाओं की, दोनों की मूल आत्मा एक ही है, सावधानी, समर्पण और सुरक्षा। तो चलिए, आज के इस पावन दिन पर हम अपने कर्म को पूजा माने, अपनों की सेहत और सुरक्षा की फिक्र करें और इसी खूबसूरत जज्बे के साथ सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और दिलकश तराने के साथ।

सच में अगर दोस्तों अगर आप सब साथ ना होते तो हमारी ये सुबह भी इतनी हसीन और सुहानी ना होती। लेकिन दोस्तों वक्त की सुइयां इशारा कर रही है कि अब आज के इस खूबसूरत सफर पर एक छोटा सा विराम लगाने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों आज की सुबह हमने सुरों की वादियों की सैर की, विश्वकर्मा जयंती के कर्मयोग और स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्व को समझा, देश दुनिया की हलचल जानी और मौसम के मिजाज के साथ अपनी सुबह को संवारा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की सुहानी सुबह ने आपके पूरे दिन के लिए ढेर सारी उमंग और मुस्कान जुटा दी होगी। दिन भर अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाइए, सेहत का ख्याल रखिए और चेहरे की ये खिली हुई मुस्कान बिल्कुल फीकी मत पड़ने दीजिए। तो दोस्तों अपनी इस दोस्त ज्योति को दीजिए आज के लिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ठीक 7 बजे कहीं ऐसे ही कार्यक्रम सुहानी सुबह में। जी हाँ, नए तरानों और ताजा बातों के साथ आपके अपने कार्यक्रम सुहानी सुबह में। लेकिन तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और आपका आज का पूरा दिन बेहद शानदार और मंगलमय गुजरे। इसी आशा के साथ मैं आपकी दोस्त आप सभी से लेती हूँ इजाजत, लेकिन ठीक 11:10 पर आज मैं आप सभी से मिलने आऊंगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद लेकर, सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ। तो दोस्तों यूं ही सुनते रहिए, साथ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य

0: पर 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्ग दर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में जीडी करनालोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
2: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
3: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
2: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
4: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट जाने शुरू हो चुके हैं।
2: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसके स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है।

0: के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द है। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi this morning. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि विगत 25 वर्षों में श्री मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति और नई दिशा प्रदान की है। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। PM विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरला, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना भी व्यक्त की है। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The three-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री के उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने सुशासन के नए मानदंड स्थापित किए और समावेशी विकास को गति दी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थलों और पर्यटक केंद्रित समुद्र तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं दिल्ली में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi in a short while. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The three-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years of public service as a head of government. This includes his 13 years as Chief Minister of Gujarat and 12 years as Prime Minister of India. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown Varnagar in Gujarat today. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Varnagar to Varanasi bike rally as part of the celebrations. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated that the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and will always remain integral and inalienable parts of India. India called upon Pakistan to immediately vacate from areas under its legal and forcible occupation instead of engaging in such theatrics. Hyderabad Liberation Day is being observed today, commemorating the historic merger of the erstwhile Hyderabad princely state with the Indian Union on this day in 1948. Central government has been organizing Hyderabad Liberation Day celebrations since 2022. This year's main program will be held at the Secunderabad Parade Grounds with Vice President C.P. Radhakrishnan as the chief guest. Union Ministers Gajendra Singh Shekhawat, G. Kishan Reddy and Bandi Sanjay Kumar, along with several other dignitaries, will participate in the celebrations. The US Federal Reserve has raised its benchmark interest rate for the first time since 2023 in an effort to lower persistent high inflation. The central bank also signaled that another rate hike could occur later this year. The quarter point increase lifts the Fed's key rate to about 3.9% and over time could result in higher borrowing costs for mortgages, auto loans and credit cards. In a set of quarterly projections, the Fed also signaled that its rate setting committee expects to hike rates a second time to 4.1%. In United States, the House of Representatives has passed a broad package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. The move comes as lawmakers look to deprive President Vladimir Putin of the financial resources needed to wage the war against Ukraine. The bill is named after the late Senator Lindsey Graham of South Carolina, who spent more than a year negotiating it. The measure was approved in a 262-159 vote and now heads to President Donald Trump to be signed into law. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Kerala, Mahe, Tamil Nadu and parts of northeast India today. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are predicted over Jammu and Kashmir, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan and Gujarat for the day. In Delhi, partly cloudy sky with a possibility of very light rainfall at isolated places during morning to forenoon is likely today. India's Asian Games 2026 campaign will get underway today with Tech Ball 2 days before the official opening ceremony in Echi Nagoya in Japan. The Indian men's doubles pair of Declan Marshall Gonsalves and Mohammad Anas Imran Beg will be the country's first athletes in action. And that is the end of this news bulletin. नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया, कहा पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमरीका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग

0: श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमीकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है और इसे अमान्य माना गया है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। फेडरल रिजर्व की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार इस साल ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे दर 4.1% तक पहुंच सकती है। इससे समय के साथ मकान, वाहन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर ब्याज बढ़ सकता है।
2: आगामी मध्यावधि चुनाव से 7 सप्ताह पहले महंगाई और खर्च वहन करने की क्षमता प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉर्श ने कहा है कि जुलाई के अंत में ब्याज दर को स्थिर रखने के फैसले के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई फेड के 2% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है और इसमें कमी के बहुत कम संकेत हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने के फैसले के बाद दरों में बड़ी कटौती की मांग की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा है कि अमेरिका में ब्याज दर 1% या उससे कम होनी चाहिए और देश को सस्ता कर्ज मिलना चाहिए। ट्रंप ने अपनी इस मांग को देश के व्यापार संतुलन से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है, उसके साथ व्यापार रोक कर अमेरिका हर साल कम से कम $1.5 trillion जमा कर सकता है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। इस विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने दान किया। पारित विधेयक अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। ये विधेयक रूस के ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही श्री ट्रंप को रूस के तेल और प्राकृतिक गैस के शीर्ष 5 आयातकों पर 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। ये बड़े मांसाहारी वन्य जीवों के अंतर महाद्वीपीय पुनर्वास का दुनिया का पहला प्रयास था।
3: कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 तक की स्थिति समीक्षा के अनुसार इनमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जीवित चीते और उनकी संतानों के साथ बोत्सवाना से हाल में लाए गए चीते भी शामिल है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अनुसार प्रजनन करने वाली मादा चीतों की स्थापना और दूसरी पीढ़ी के शावकों का जीवित रहना भारत में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कौमुदी पारेख, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान 26

अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत से सहायता लेने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। नेपाल के वित्त सचिव घनश्याम उपाध्याय ने बताया कि श्री वागले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुनिया AI सुरक्षा के मामले में मानकों को कमतर करने का जोखिम नहीं उठा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि AI से जुड़े खतरों से नागरिकों की रक्षा करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समन्वय भी जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का यह बयान एंथ्रोपिक के मुख्य अधिकारी डारियो अमोडेई के उस प्रस्ताव के संदर्भ में आया जिसमें प्रमुख तकनीकी कंपनियों और सरकार के समन्वय से AI विकास की गति को धीमी करने की बात कही गई है। OpenAI के सैम ऑल्टमैन, SpaceX के एलन मस्क और कुछ अन्य उद्योग जगत के नेताओं ने भी हाल में AI विकास को धीमा करने की आवश्यकता जताई है। हालांकि मेटा के मुख्य अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने इस रुख से दूरी बनाते हुए कहा कि हर AI कंपनी को अपनी तकनीक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अमेरिका ने 2 दशक से अधिक समय के बाद पहली बार वेनेजुएला को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में विफल देशों की सूची से हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आज जारी बयान में इसकी घोषणा की गई। इस सिलसिले में पड़ोसी देश कोलंबिया की भी समीक्षा पर विचार किया जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के 6 पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक, इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा

0: अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थलों और पर्यटक केंद्र समुद्र तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के अवसर पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सरकार ने सोशल मीडिया पर जारी उस भ्रामक सूचना का सिरे से खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद कुछ वैश्विक नेता बीमार पड़ गए थे। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेम सेल थेरेपी के विनियमन से संबंध में परामर्श जारी किया है। इस संबंध में दिशा निर्देश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से जारी किए। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated SEMICON India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. The three-day conference is focusing on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. The event has brought together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 50 countries. The exhibition features six country pavilions representing Japan, South Korea, Malaysia, the Netherlands, Singapore and Sweden, 12 state government pavilions and a dedicated startup pavilion. The conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It has brought together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years in public service as a head of government. This includes his 13 years as Chief Minister of Gujarat and 12 years as the Prime Minister of India. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown Vadnagar in Gujarat today. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Vadnagar to Varanasi bike rally as part of the celebrations. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and will always remain integral and inalienable parts of India. India called upon Pakistan to immediately vacate from areas under its illegal and forcible occupation instead of engaging in such theatrics. Hyderabad Liberation Day is being observed today, commemorating the historic merger of the erstwhile Hyderabad princely state with the Indian Union on this day in 1948. Central government has been organizing Hyderabad Liberation Day celebrations since 2022. This year's main program will be held at the Secunderabad Parade Grounds with Vice President C.P. Radhakrishnan as the chief guest. Union Ministers Gajendra Singh Shekhawat, G. Kishan Reddy and Bandi Sanjay Kumar, along with several other dignitaries, will participate in the celebrations. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have extended greetings to Prime Minister Narendra Modi on his birthday today. In a social media post, President Murmu lauded Mr. Modi's exemplary public service and contribution to nation building over the past 25 years. The Vice President said, under the visionary leadership of Mr. Modi, India is shining as a bright spot in the world and is among the fastest growing major economies. Leader of opposition in Rajya Sabha and Congress President Mallikarjun Kharge has extended greetings to Prime Minister Narendra Modi on his birthday today. In a social media post, Congress President wished Mr. Modi good health and long life. In United States, the House of Representatives has passed a broad package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. The move comes as lawmakers look to deprive President Vladimir Putin of the financial resources needed to wage the war against Ukraine. The bill is named after the late Senator Lindsey Graham of South Carolina, who spent more than a year negotiating it. The measure was approved in a 262-159 vote and now heads to President Donald Trump to be signed into law. The U.S. Federal Reserve has raised its benchmark interest rate for the first time since 2023 in an effort to lower persistent high inflation. The central bank also signaled that another rate hike could occur later this year. In men's cricket, India will play the final match of the three-match T20 International Series against Afghanistan in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद, 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।

फे की आवाज़ में फिल्म गोपी से, और इसके पंक्ति लिखे थे राजेंद्र कृष्णन ने और संगीत से पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, और आज मैं आई हूँ आप सभी के साथ आपके अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर। दोस्तों कभी कोई गीत हमें हंसा देता है, कभी वही गीत बीते हुए दिनों की याद दिला देता है, और कभी किसी गीत की एक पंक्ति सीधे दिल में उतर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन खूबसूरत एहसासों को शब्द कौन देता है? तो दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे ही हुनरमंद रचनाकार को जिन्होंने हिंदी सिनेमा के गीतों को कभी शोखी दी, कभी प्यार

की मिठास और तो और कभी दर्द की गहराई और कभी जिंदगी को देखने का एक खूबसूरत अंदाज। नाम है राजेंद्र कृष्णन। एक ऐसा नाम जो शायद आज की पीढ़ी के लिए उतना जाना पहचाना ना हो, लेकिन उनके लिखे गीतों से कई पीढ़ियां आज भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हम याद करेंगे उन्हें जहाँ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे। उस दौर की ओर मैं आपको आज ले चलूंगी। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र कृष्णन द्वारा लिखी हुई एक और प्यारे से गीत की ओर, नगमे की ओर बढ़ते हैं।

तो दोस्तों हम बातें कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के विषय में। इनका पूरा नाम राजेंद्र कृष्ण दुग्गल था और इनका जन्म 6 जून 1919 को जलालपुर की चट्टान में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। और बचपन से ही उनकी रुझान जो थी कविता की ओर थी। पढ़ने लिखने में उनकी विशेष रुचि थी और शुरुआती जीवन में उन्होंने शिमला के नगर पालिका कार्यालय में क्लर्क के रूप में काम भी किया, लेकिन मन कविता और साहित्य में ही रमा रहा। उन्होंने हिंदी और उर्दू के साहित्य को गहराई से पढ़ा और कविता लिखना जारी रखा और आगे चलकर यही साहित्यिक रुचि उन्हें मुंबई की फिल्मी दुनिया तक ले आई। उनकी प्रतिभा सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं थी, वे पटकथा और संवाद भी लिखते थे, यानी कहानी से लेकर संवाद और गीत तक लेखन के कई क्षेत्रों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और अगर इनकी शुरुआती फिल्मों के काम का उल्लेख जो है जनता और जंजीर जैसे फिल्मों के साथ मिलता है, उनके करियर के शुरुआती दौर में ही उनकी लेखनी ने फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। उनकी लेखनी की खासियत थी सरल शब्दों में भावनाओं को व्यक्त करना, ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर लगता था कि ये तो हमारे ही मन की बात है। तो चलिए दोस्तों, बात और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

एक आवश्यक सूचना। डाक अदालत अधीक्षक RMS SP मंडल की अध्यक्षता में RMS SP मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक RMS SP मंडल कार्यालय 2 MG रोड हावड़ा चौथी मंजिल हावड़ा प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 711101 में गूगल मीट के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में RMS SP मंडल से संबंधित RMS सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा ईमेल के माध्यम से अधीक्षक RMS SP मंडल हावड़ा 711101 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाए। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हो। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक से दूरभाष संख्या 0332641 5949 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामलों और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त।

0: आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद, 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।
1: तो दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण की लेखनी का एक खूबसूरत पहलू यह था कि वे सिर्फ गंभीर या भावुक गीतों तक सीमित नहीं रहे। उनकी गीतों में मस्ती थी, शरारत थी, लोक रंग था और आम बोलचाल की भाषा की सहजता भी थी। 1950 के दशक में उनके कई गीत बेहद लोकप्रिय हुए। फिल्म अलबेला का नाम लेते ही एक से बढ़कर एक मस्ती भरे गीत याद आते हैं, क्योंकि इन गीतों में शब्द, संगीत और अभिनय का एक ऐसा मेल था कि वे आज भी सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आती है। तो चलिए दोस्तों, फिल्म अलबेला से इस गीत को सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।

दिशा के गीत से मेरे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म लव मास्टर से। इस गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण और संगीत से पिरोया था कल्याण जी और आनंद जी ने। तो दोस्तों अभी कैसा गीत जिसने शब्दों को शरारत दी। जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीतों में प्रयोग और कल्पनाशीलता की भी कमी नहीं थी। फिल्म आशा के गीत का शानदार इस बात का उदाहरण है, क्योंकि गीत के शब्द अपने आप में एक तरह का खेल है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है।

आप सुन रहे हैं सुरीली नगमों की सौगात, लो आ गई उनकी याद, 100.1 एफएम गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद।

तो दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण की कलम की सबसे खूबसूरत खासियत थी कि वे प्रेम की गहरी भावनाओं को भी बेहद सरल और सहज शब्दों में कह देते थे। एक ऐसा ही गीत है फिल्म ब्लैकमेल का। जी हाँ, गीत है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। 1973 में आई इस फिल्म के लिए इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा, संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और अपनी दिलकश आवाज से इसे यादगार बनाया किशोर कुमार ने। गीतों के बोलों में प्रेम की वो भावना है जिसमें प्रिय व्यक्ति सामने ना होते हुए भी हर पल दिल के करीब महसूस होता है। हर शाम, हर रात, हर सांस में उसकी मौजूदगी का एहसास। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण की कलम से निकला ये बेहद खूबसूरत प्रेम गीत।

मुंबई में हुआ। वे 68 वर्ष के थे, लेकिन अच्छे रचनाकारों की खासियत यही होती है कि उनका जीवन समाप्त हो सकता है लेकिन उनकी रचनाएं नहीं। राजेंद्र कृष्ण आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी जब बजते हैं तो लोग उन्हें गुनगुनाते हैं और नई पीढ़ी भी उन गीतों में पुराने जमाने की मिठास खोज लेती है। उनकी कलम ने हमें सिखाया कि अच्छे गीत के लिए शब्दों का कठिन होना जरूरी नहीं, जरूरी है भावना का सच्चा होना। तो दोस्तों, आज की इस सफर में हमने याद किया उस रचनाकार को जिसकी कलम ने हिंदी फिल्म संगीत को कई रंगों के शब्द दिए। एक कवि, एक गीतकार, एक पटकथा लेखक, एक संवाद लेखक और सबसे बढ़कर भावनाओं को सरल शब्दों में कहने वाले एक बेहद खूबसूरत रचनाकार। उनके गीतों में हमें कभी प्यार मिला, कभी इंतजार, और कभी हंसी मिली तो कभी दर्द, और कभी जिंदगी को देखने का एक नया अंदाज। शायद इसीलिए इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके गीत पुराने नहीं लगते। वे जब भी बजते हैं तो कोई पुरानी याद दस्तक देती है और हम अनायास कह उठते हैं, लो आ गई उनकी याद। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत याद के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी गीतकार, गायक या संगीतकार की कहानी और उनके गीतों के साथ। तब तक सुनते रहिए पुराने गीतों की यह महफिल और हाँ, मुस्कुराते रहिए। और अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए इजाजत और जाते जाते कोकिलाकंठ लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में फिल्म पड़ोसन से ये मधुर तराना आप सभी के लिए छोड़े जाते।

0: ताजा समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 में ये बात कही।
1: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: इस अवसर पर श्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि निर्माण और आत्मनिर्भरता हमारी परंपरा में शामिल रहा है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन के 6 स्तंभों के बारे में जानकारी दी।
2: Semicon 2.0 will build the semiconductor industry over 6 pillars. Pillar number 1 is design. The pillar number 2 is machines and materials. Pillar 3 will be more display, memory, silicon, compound and logic fabs. Pillar 4 will be more advanced packaging units. Pillar 5 will be research and development. The pillar 6 is about talent.
0: 3 दिन का ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का

0: विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एस सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहिर, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. The 3-day conference is focusing on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing and on the other side, the global trust in India is also growing. He said every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India. The Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: On the occasion, Union Minister of Electronics and IT, Ashwini Vaishnav said, India had wanted to establish a semiconductor industry for several decades. It was possible only under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The Semicon India 2026 event has brought together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 50 countries. The BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan has begun from today to mark the completion of 25 years of Prime Minister Narendra Modi's public life and service. As part of the Seva Sankalp Abhiyan, which will continue till the 17th of next month, the first day of the campaign is being observed as Seva Divas, under which blood donation camps have been organized across the country. Later, talking to media on the occasion, BJP Chief Nitin Naveen said party workers across the country are participating in these blood donation camps. He noted that under the leadership of the Prime Minister Modi, lives of citizens have been transformed. Mr. Naveen said under the leadership of Prime Minister Modi, India is rapidly moving on the path of development to achieve the goal of Vikasit Bharat by 2047.

0: 1945 সালের ওষুধ সংক্রান্ত নিয়োগ বিধি সংশোধনের প্রস্তাব করেছে। প্রধানত HH1 এবং X শিডিউলে অন্তর্ভুক্ত ওষুধপত্র বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বিধি জোরদার করার লক্ষ্যে এই প্রস্তাব করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিডিউলের অধীনে ওষুধ কিনতে হলে বিধিসম্মত প্রেসক্রিপশন লাগে। সংশোধনীতে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই এই ধরনের ওষুধপত্র বিক্রয় বন্ধে ওষুধের দোকানগুলিতে বাধ্যতামূলক CCTV নজরদারির কথা বলা হয়েছে। জম্মু কাশ্মীরের উধমপুর জেলার ব্রাত্তল এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে দুই জঙ্গি মারা পড়েছে। আকাশবাণীর জম্মু সংবাদদাতা জানাচ্ছে, গতরাত্রে ওই এলাকায় জঙ্গিদের উপস্থিতির খবর পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি অভিযান শুরু করে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, পাহাড়ি অঞ্চল এবং দৃশ্যমানতা সত্ত্বেও জম্মু কাশ্মীর পুলিশ ও CRPF যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান চালায়। সেনাবাহিনী সূত্রে জানানো হয়েছে, আজ সকাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকায় তল্লাশি ও নজরদারি চলছে। ঘটনাস্থলে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে আজ ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে 3 ম্যাচের T20 আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সিরিজের শেষ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। খেলা শুরু হবে সন্ধ্যা 7:30। প্রথম 2 ম্যাচে জয়ী হয়ে ভারত ইতিমধ্যেই সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে আফগানিস্তান কেবল মাঝে মধ্যে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে। শেষ করার আগে সংবাদের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ভারতের অর্থনীতির বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের দেশের উপর বিশ্বের আস্থাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আজ নতুন দিল্লিতে সেমিকন ইন্ডিয়া 2026-এর উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ও তার প্রশাসনিক কার্যকালের 25 বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ দেশ জুড়ে সেবা সংকল্প অভিযান শুরু হচ্ছে। পাকিস্তান চীন যৌথ সীমান্ত কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করে ভারত জানিয়েছে, এই দুই দেশের মধ্যে কোনো স্বীকৃত সীমান্ত নেই। খবর শেষ হলো, এর পরবর্তী সংবাদ শুনবেন দুপুর 1:30।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কনকলতা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
3: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023

0: में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित संशोधन इन औषधियों की अनधिकृत पहुंच और बिक्री से संबंधित खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing and on the other side, global trust in India is also growing. He said, despite the challenging global environment, India recorded a growth rate of 7.8%. Prime Minister said at the same time Japan's credit rating agency also upgraded India's sovereign rating. Mr. Modi said every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India. The Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने transmission network को भी expand किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: ऑन द ओकेजन यूनियन मिनिस्टर of Electronics and IT, Ashwini Vaishnav said, India had wanted to establish a semiconductor industry for several decades, but it was possible only under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said the foundation has now been laid and the next step is to build the industry through Semicon 2.0. The BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan has begun from today to mark the completion of 25 years of Prime Minister Narendra Modi's public life and service. As part of the Seva Sankalp Abhiyan, which will continue till the 17th of next month, the first day of the campaign is being observed as Seva Divas, under which blood donation camps have been organized across the country. Talking to media on the occasion, BJP Chief Nitin Naveen said, party workers across the country are participating in these blood donation camps. Mr. Naveen said, under the leadership of Prime Minister Modi, India is rapidly moving on the path of development to achieve the goal of Vikasit Bharat by 2047. Securities and Exchange Board of India Chairman Tuhin Kanta Pandey has said that greater public awareness about the risks involved in derivatives trading is needed as many retail investors continue to suffer losses even after 3 to 4 years of trading in the futures and options segment. Addressing the NABFID Annual Infrastructure Conclave 2026, Mr. Pandey highlighted the need for investors to understand whether they are prepared to participate in the derivatives market. Mr. Pandey said the securities market can play an important role in meeting India's growing infrastructure financing requirements by providing capital at different stages of an asset's life cycle. The Enforcement Directorate's Delhi Zone

0: BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
2: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
2: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
3: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और 5वां स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमी

0: कंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
2: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
4: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खावो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
3: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
5: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसा युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
2: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में

0: कि माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
2: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
3: Draining the swamp that provided an
4: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: একটু বলো তুমি কিরম বলছিলে।
1: কি বলছিলাম সেটা বলবো, তবে হাতের সময়টা বড্ড কম, আমাদের সংবাদ বিরতিতে যেতে হবে। ভূমিকায় যেটা বললাম যে নেগেটিভ চরিত্র আমরা পেয়েছিলাম, সেই যে অভিনয়ের শেডটা সেটা নিয়েই ফিরে আসবো ঠিক 3:10 সংবাদ বিরতির ওপারে। সঙ্গে থাকুন 100.1 FM গোল টিউন করে।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
3: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। इसके पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के बाद स्वयं भी रक्तदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लिखित एक लेख साझा किया है। इस लेख में भारत के समावेशी विकास पथ का उल्लेख किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने सरकार की मूल नीति सबका साथ सबका विकास पर बल दिया है। लेख में श्री कोविंद ने बताया है कि कैसे भारत की विकास गाथा उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में ला रही है जो पहले अनसुने, अनदेखे या उपेक्षित थे। PM विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को याद करने का आह्वान किया।
4: Draining this swamp that provided an
5: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
2: जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो रही है। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा।

0: कतर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाव को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इसमें नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। इसके पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के बाद स्वयं भी रक्तदान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लिखित एक लेख साझा किया है। इस लेख में भारत के समावेशी विकास पथ का उल्लेख किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने सरकार की मूल नीति सबका साथ सबका विकास पर बल दिया है। लेख में श्री कोविंद ने बताया कि कैसे भारत की विकास गाथा उन लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में ला रही है जो पहले अनसुने, अनदेखे या उपेक्षित थे। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को याद करने का आह्वान किया।
2: Draining this swamp that provided an
3: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: लॉट ऑफ अप्लाइड R&D विल बी डन वेयर द इंडस्ट्री विल बी इन्वाइटेड टू गिव प्रोजेक्ट्स फॉर R&D वेयर गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री विल फंड देम। एकेडेमिया विल ज्वाइन इट एंड इट विल बी अ journey which can really produce some good tangible results।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की नीलामी आज से शुरू हो गई है। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में निहित जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। वे आज NABFID वार्षिक अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने कहा कि एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत पर वैश्विक भरोसा भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को याद करने

का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में दो आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, चाय एंड क्लासिक्स की शुरुआत हो चुकी है और फिल्म लोफर से हमने की शुरुआत। और फिलहाल आपने जो गीत सुना वो सुना फिल्म दोस्ताना से, लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता और आप सुन रहे हैं चाय एंड क्लासिक्स। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और फिलहाल तो हम आपको लेकर चलेंगे परियोजना प्रस्तुति की ओर। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक योजनाओं में से हम प्रत्येक दिन परियोजनाओं पर चर्चा करते हैं। तो आज की परियोजना है, जी हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने आरंभ की है अन्नपूर्णा योजना। और आज है विश्वकर्मा पूजा और आज के दिन भी दिन से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल में हो रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार के महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य राज्य में रहने वाली पात्र महिलाओं को सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुनिश्चित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति माह 3,000 रुपये प्राप्त होते हैं। यह वित्तीय सहायता लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा की जाती है। लक्ष्मी भंडार योजना के मौजूदा लाभार्थियों को निर्धारित शर्तों के अधीन अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित किया जाता है। नए आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की

सुविधा 1 जून 2026 से अन्नपूर्णा योजना पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। दोस्तों, इसके फायदे हैं कि पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये मिलेंगे। भुगतान का तरीका है वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। बैंक खाते की आवश्यकता राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है। इसके जो पात्र हैं उनके हम आपको बता दें कि आवेदक महिला होनी चाहिए, आवेदक की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक किसी भी प्रकार की स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसी वैधानिक निकाय, सरकारी उपक्रम, पंचायत, नगर निकाय, स्थानीय निकाय के अधीन नियमित वेतन पेंशन प्राप्त हो, या इस राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान आदि के अधीन शिक्षण या गैर शिक्षण पद पर कार्यरत ना हो, आवेदक किसी भी प्रकार का आयकर नहीं चुका रहा हो। इसके अलावा दोस्तों, ऑनलाइन इसकी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आधिकारिक अन्नपूर्णा योजना आवेदन पोर्टल पर इसे आवेदनकर्ता आवेदन कर सकता है। चरण 2 में ड्रॉप डाउन से जिले का नाम चुनें और मोबाइल नंबर दर्ज करें। अगली विंडो में पारिवारिक स्तर डेटा संग्रह फॉर्म दिखाई देगा। परिवार के मुखिया की सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें। इसके बाद अन्य सदस्यों की जानकारी भी दर्ज करें। संबंधित दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन आईडी नोट कर लें। इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनमें आधार कार्ड, ईपीआईसी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड का विवरण, परिवार के सदस्यों का पैन कार्ड, भूमि का विवरण, स्वास्थ्य साथी कार्ड नंबर यदि उपलब्ध हो। तो दोस्तों, आज हमने बात की अन्नपूर्णा परियोजना की। ये आकाशवाणी FM गोल्ड यानी खरा सोना है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक और अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दाग से।

जारी रहेगा, लेकिन पहले आपके लिए आवश्यक सूचना। 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 28/10/2026 को अपराह्न 12:30 पर मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगा योग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 138वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों की डाक सेवाओं और पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए। और यह डाक या ईमेल ID cpmg_wb@indiapost.gov.in adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 30/9/2026 तक या उसके पूर्व होनी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 03322120250 या फिर 03322120612 या फिर 03322120 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत या पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत या पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म चरस से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। माफ़ कीजिए दोस्तों, कल आज और कल का ये गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार नीरज, संगीतबद्ध किया शंकर जय किशन ने।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो,

0: मुस्कुराई
1: अरे अरे अरे, क्या आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ आए किस लिए? तो दोस्तों, हम तो यहाँ आए हैं आपको क्लासिक सॉन्ग सुनवाने के लिए, और आप आए हैं हमारे साथ सुनने के लिए। तो चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म फूल बने अंगारे से मुकेश की आवाज़ में गीतकार आनंद बख्शी, संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: चाय एंड क्लासिक्स में आगे बढ़ने से पहले आइए आपके साथ एक आवश्यक सूचना साझा कर लेते हैं। दोस्तों, डाक अदालत अधीक्षक RMS SB मंडल की अध्यक्षता में RMS SB मंडल की डाक अदालत का आयोजन दिनांक 7/10/2026 को 12 बजे अधीक्षक RMS SB मंडल कार्यालय 2MG रोड हावड़ा, चौथी मंजिल हावड़ा, प्रधान डाकघर भवन हावड़ा 7111-01 में गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस डाक अदालत में RMS SB मंडल से संबंधित RMS सेवाओं की शिकायतों समस्याओं पर विचार किया जाएगा। ग्राहक अपने सहायक दस्तावेजों सहित अपनी शिकायतें डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या ईमेल rmssbdn@gmail.com ईमेल के विषय में एप्लीकेशन फॉर डाक अदालत अवश्य लिखें के माध्यम से अधीक्षक RMS SB मंडल हावड़ा 7111-01 को इस प्रकार भेज सकते हैं कि वे दिनांक 28/9/2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाएं। शिकायतकर्ता अपना ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप नंबर अनिवार्य रूप से

प्रदान करें। इच्छुक ग्राहकों या शिकायतकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डाक अदालत में समय पर उपस्थित हों। किसी भी अन्य स्पष्टीकरण हेतु सहायक अधीक्षक मुख्यालय से दूरभाष संख्या 0332641549 पर संपर्क किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस VC का लिंक यथासमय साझा कर दिया जाएगा। कानूनी मामलों जैसे उत्तराधिकार आदि और नीतिगत मामलों से संबंधित प्रकरणों पर उपयुक्त डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

दोस्तों, ये गीत आपने सुना फिल्म काली चरण से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। चाय एंड क्लासिक्स में आपके साथ है सविता पुद्दार। और आइए, न्यूज़ ब्रेक से पहले हम आपको एक और गीत फिल्म इज्जत से सुनवाएंगे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। 6 बजे हिंदी में सीधे सीधे आप दिल्ली से सुनेंगे समाचार, 6:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे दिल्ली से, 6:10 पर हम वापस आपके साथ जुड़ेंगे चाय एंड क्लासिक्स में। तो आइए सुनते हैं हम अगला गीत फिल्म इज्जत से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार हैं साहिर और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं चाय एंड क्लासिक्स का अगला गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी ग्राम जी योजना विकसित गांव के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इससे शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों को और उपहारों की नई नीलामी प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7:30 से नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said India is emerging as a reliable destination for global manufacturing and is preparing to meet new challenges. Mr. Modi stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi today. The Prime Minister highlighted the growing demand for artificial intelligence, saying the focus is now shifting beyond transistor size to overall system integration, including memory placement and heat management.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: Later, addressing a press conference on the sidelines of the event, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said India's semiconductor design capabilities are recognized globally and Semicon 2.0 will focus on promoting semiconductor design companies in the country. The three-day conference and exhibition bring together global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment and develop future-ready talent. Prime Minister Modi today said the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards the goal. Mr. Modi stated this while virtually addressing a gathering in West Bengal on the occasion of the release of the 4th installment under the Annapurna Yojana, providing 3,000 rupees per month to around 1.5 crore women.
3: आज विश्वकर्मा पूजा का पावन अवसर भी है। मैं आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इसी पावन समय में आज बंगाल में एक नई परंपरा सशक्त हो रही है। आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
1: All person-to-person UPI transaction will remain free, enabling sending money to friends, paying at shops or scanning a QR code without any charges. Sources in the government said vendors earning up to 1 lakh rupees per month through UPI QR codes will continue to attract zero charges. They informed that all RuPay debit card linked to UPI transactions will also continue to remain free, of any charge. As per the sources, around 96% of person-to-merchant P2M UPI transactions will remain unaffected. However, transactions above 2,000 rupees in essential sectors such as railways, fuel and others will

100.1 FM गोल्ड यानी खरा सोना पर आपकी दोस्त सविता एक बार फिर से करती है आपका स्वागत अभिनंदन। जी हाँ, न्यूज़ ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और फिलहाल आपके लिए पेश करेंगे फिल्म नौकर का ये गीत।

0: दोस्तों, ये गीत आपने सुना फिल्म नौकर से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में, गीतकार मजरू और संगीतबद्ध किया राहुल देव बर्मन ने।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम, आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।
0: दोस्तों, आज की शाम चाय एंड क्लासिक से सजी हुई है और उधर आप चाय की ले रहे हैं चुस्कियाँ और इधर हम बजा रहे हैं क्लासिक्स। होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे। हम डिफरेंट जॉनर के गाने आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट मूड्स के गाने सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सुनवाते हैं अब मुकेश की आवाज़ में फिल्म विश्वास से ये गीत। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अर्थ दोस्तों, हमारी चाय एंड क्लासिक्स की मंजिल धीरे धीरे अपने मुकाम पर आ पहुँची है। द ट्रेन का ये गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। और कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश करने का वक्त आ चला है। फिल्म लैला मजनू से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीतकार साहिर, संगीतबद्ध किया मदन मोहन और जयदेव ने। और इसी गीत के साथ आपकी दोस्त सविता आपसे चाहेगी इजाज़त। मुलाकात होगी हमारी और आपकी 22 तारीख को, कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में। तो बस थोड़े से दिनों के लिए आपसे हम फिर से आने का वादा करके जा रहे हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी शाम सुहानी हो, इसी दुआ के साथ।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा.
0: थैंक यू अमित. यस, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स ऑन फ्लैट नोट. निफ्टी सेटल्स अबव 23,250. यूएस लॉ मेकर्स पास पैकेज ऑफ सैंक्शंस टारगेटिंग रशिया एंड ईरान्स की इकोनॉमिक पिलर्स. न्यू दिल्ली सेज इंडिया रिमेन्स फर्मली कमिटेड टू इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड विल कंटिन्यू टू डू सो थ्रू डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग. एंड कंट्रीज सेमीकंडक्टर ecosystem is expanding rapidly, opening new opportunities for innovation, investment and growth, says Prime Minister Narendra Modi.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा. निफ्टी 23,250 के स्तर से ऊपर दर्ज. अमरीकी कानून निर्माताओं ने रूस और ईरान के मुख्य आर्थिक आधार पर प्रहार करने के लिए प्रस्ताव पास किया. भारत ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति करना जारी.

0: Well, before we move any further, here's a disclaimer for our listener friends. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर घरेलू शेयर बाजार में आज आम तौर पर खास बदलाव नहीं नजर आया मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग पूरे स्तर पर बना रहा जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मामूली बढ़त से बंद हुआ सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर दर्ज हुआ जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ एनएससी मिड कैप सूचकांक में 0.9% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई हालांकि कारोबार की शुरुआत में अमरीकी फेडरल रिजर्व के रुख और वैश्विक परिस्थितियों पर चिंता के कारण बाजार दबाव में नजर आए बाद में दोनों सूचकांक संभल गए और बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए
0: इन द इंडियन स्टॉक मार्केट टुडे सेंसेक्स एंडेड लार्जली अनचेंज्ड व्हाइल निफ्टी क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट सेंसेक्स डिप्ड 22 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,315 निफ्टी एडेड 53 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,271. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index gained 0.9%, while the Small-Cap 100 Index added 0.8%. Earlier, the markets opened mildly lower after a hawkish stance from the U.S. Fed Reserve and concerns over geopolitical developments. However, both the indices soon recovered and traded with gains for most of the volatile session, supported by value buying.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई मजबूती वाले प्रमुख शेयरों में टाटा स्टील 2.8% भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2.4% और इंडिगो 2.3% की बढ़त से बंद हुए हालांकि एचडीएफसी बैंक 1.3% टाइटन 1.1% और आईसीआईसीआई बैंक 1% की गिरावट से बंद हुए
0: Let's take a look at the sectors now. Well, in the sectoral indices on the BSE, 18 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, insurance advanced 3.2%, capital goods jumped nearly 2%, and industrials gained 1.5%. In contrast, top 10 banks declined 0.7%, private banks index shed 0.6%, and BankEx dropped 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,686 companies advanced and 1,642 declined and 207 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ प्रकाश किस तरह से आंकते हैं बाजार में एक तरफ तो ये भी नजर आता है कि अगर तकरीबन 2,700 कंपनियां आज अगर बीएसई की हम बात करते हैं तो वो मजबूती की तरफ थी जबकि तकरीबन 1,650 कंपनियों में आज दबाव नजर आया या गिरावट नजर आई लेकिन फिर भी सेंसेक्स अपने स्तर के आसपास ही दर्ज हुआ वैश्विक परिस्थितियों का कारण था अमरीकी फेडरल रिजर्व ने जो अनाउंसमेंट की है उसका असर था या अभी भी जो अमरीका ने नए जो टैरिफ लगाने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं ये उसका असर है
2: नहीं खास तौर पे आम तौर पे जो ज्यादा संभावना है कि क्या रहा होगी किस तरह के कारण रहे होंगे कि आज की मार्केट की जो परिस्थिति है उसमें वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वही हावी रही इस पे क्योंकि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसने जो इंटरेस्ट रेट जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है 25 बेसिस पॉइंट से वो अपने आप में एक एक्सपेक्टेड था वो एक तरह का डिस्काउंटेड था 90% लोग वैसे ही उम्मीद कर रहे थे कि उसकी मीटिंग से बढ़ेंगी और तो डिस्काउंटेड था इसलिए कोई मार्केट में बहुत बड़ा ना उछाल को अदला बदली नहीं हुई एक तरह का एक्सपेक्टेड ही था दूसरा जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम थी वो तो पिछले कई दिनों में

0: हालात तो खराब ही हुए थे। तो उस चलते क्योंकि मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो चुकी थी, थोड़ी बहुत ये जो फेडरल रिजर्व का डिसीशन था एक तरह का क्या होता है, मार्केट को ना अनसर्टेनिटी अनिश्चितता पसंद नहीं है, तो अंग्रेजी बोलते हैं इट्स आउट ऑफ द वे नाउ कि कम से कम मालूम पड़ गया 25 बेसिस पॉइंट है। हालांकि जैसे लालिमा जी ने वो कहा कि फेडरल रिजर्व का टोन अभी भी हॉकिश है, हॉकिश के मायने ये हैं कि अभी भी हम इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन वहाँ अभी भी जो महंगाई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, और महंगाई अमेरिका क्या पूरे संसार में दिक्कत हो रही है, तभी इंटरेस्ट रेट जिसको हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं उसके माने यही है, इन्फ्लेशन है इंटरेस्ट रेट। पिछली कार्यक्रम में मैंने कहा था कि वो जो पार्टी टाइम था ना, लोअर इंटरेस्ट रेट वाला ईजी मनी वाला द पार्टी टाइम इज ओवर, तो उसके चलते ये सब वैश्विक परिस्थितियाँ जा रहे हैं जो आज के मार्केट को एक तरह का ब्रीफली बताएं तो ये है।
1: Why do we see a bit of a dichotomy? Sensex is largely unchanged, but Nifty ends on a positive note.
0: It's a funny thing. I think it should not have happened because what has happened is a new system, what's called CAS, has been introduced for over a month now in the Indian market. It's still in the trial stage, and it throws this kind of surprises now and then. And then finally, when the fine tuning is done, you find a different thing. But it is quite confusing, and the traders are concerned about it. They have conveyed their concerns to the market regulator SEBI, and let's hope this is sorted out.
1: For people who want to invest in the stock markets, is this the right time? Because for a change, we see, as they say, no news is good news, or should we wait and watch? Because as you said, markets don't like uncertainty. Now it's the certainty is that there is, you know, uncertainty in a way.
0: I'll tell you what, when it comes to Indian investors, there's one channel which always remains open now, what is called systematic investment plan, what is SIP2, so to speak,
1: right,
0: which is done through mutual fund. Something like 30,000 crores of rupees is mopped up every month through SIP. And a lot of these young professionals are committed to that. It is only because of that commitment that mutual funds or DIIs are able to mobilize that kind of amount. And this is the amount which is providing stability to our market.
2: तो प्रकाश, क्या इसके क्या ये मायने माना जाए कि भारतीय जनमानस या भारत का जो घरेलू निवेशक है उसको अपने बाजार की क्षमताओं पर, उसको अपने बाजार की स्थिरता पर पूरा भरोसा है, बाजार अगर गिरता है या उठता है, लेकिन वो जो निवेशक है जो सतत निवेश कर रहा है, निरंतर निवेश कर रहा है, वो छोटी छोटी मात्रा में ही सही, वो निरंतर निवेश कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसका निवेश सुरक्षित है और उसको उस निवेश पर एक निश्चित आय जरूर होगी।
0: देखिए क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो हमारे मुल्क में है वो बड़ी मैच्योर हो गई। अब हमारे यहाँ इतनी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की, और इनकी एक संस्था है एमफी बोलते हैं जिसको, उन्होंने एक नैरेटिव चलाया हुआ है एड कैंपेन बड़े सालों से जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन है उसमें जैसी जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं उस हिसाब से वो लोग अपना टोन एंड टेनर चेंज करते हैं। तो वो दे हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू सेंड दिस मैसेज कि भाई मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म टिकना पड़ेगा।
2: वहाँ पे मतलब पेशेवर लोग हैं जो प्रोफेशनल,
0: जो आपको प्रोफेशनल हैं, जो 30,000 करोड़ रुपए आता है वही इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ पे
2: जी।
0: तो यहाँ का जो रिटेल इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो उसको भी ये चीज उसने विश्वास कर लिया है कि भाई,
2: और म्यूचुअल फंड कंपनियां इस विश्वास पे खरा भी उतर रही हैं।
0: नहीं, वो कहना अभी जल्दबाजी।
2: चलिए, अगर हम
0: वो अभी कहना जल्दबाजी,
2: अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की बात करें उसमें तकरीबन आज लगभग 1% की मजबूती भी नजर आई है। क्या ये माना जाए जो सेंसेक्स पैक तो चूंकि छोटा है, और अगर निफ्टी 50 की भी बात करें वहां पे भी उतनी ज्यादा कंपनियों का समावेश नहीं है, तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप है जो चूंकि बड़ा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है वहां पे लोगों की उम्मीदें हैं और वहां पे बेहतर प्रदर्शन की भी उम्मीद है, इसलिए उसमें तेजी हुई।
0: देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप और वर्सेस लार्ज कैप जिसको बोलते हैं
2: जी,
0: जो बड़ी जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है, जो टॉप कंपनीज है 100 टॉप कंपनी लार्ज कैप्स में आती है, पिछले दिनों में कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने बड़ी अच्छी रिटर्न दी है, और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो इन पे स्पेशलाइज करते हैं उन्होंने भी अच्छी रिटर्न दी है। कारण यह है कि

0: तो जो ग्रोथ होता है, जो ऑलरेडी कंपनी बड़ी लार्ज हो चुकी है उसकी ग्रोथ रेट उतनी अच्छी कई बार नहीं हो पाती क्योंकि बेस बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता है। दूसरी बात यह है कि स्मॉल कैप जो कंपनीज है अभी ग्रोथ उसमें एपिटाइट है, भूख है उसमें, आगे बढ़ने की भूख है, और वो फिर एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उसमें। तो जैसे सिचुएशन आती है एक लेगेसी बेस्ड इश्यूज नहीं रहते उसमें, एंड दैट्स द रीज़न। और एक और रीज़न है कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो मोस्टली देवर इन्वेस्टेड इन द लार्ज कैप्स। सो व्हेन देवर एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट and the money was flowing out of the large caps, small and caps were not that much affected by the FIIs outflows. ये सारे कारण थे जिसकी वजह से mid और small caps में आपको better performance दिखी।
1: तो ये मानने के भी हमारे पास पर्याप्त कारण है कि भारत की जो मध्यम दर्जे की कंपनियां हैं उसका प्रदर्शन निरंतर मजबूत और सतत बना हुआ है, एक स्टेडी बना हुआ है।
0: हाँ अच्छी बात है, लेकिन उनमें अब हो क्या रहा है अमित जी कि इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर कई बार ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी हैं जो मान लीजिए जो म्यूचुअल फंड के जो स्मॉल कैप्स के जो फंड्स हैं तो उनको बाय फोर्स दे हैव टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स में लोग बेट कुछ ज़्यादा ही लेने लग पड़े, तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा है तो फिर रिस्क भी ज़्यादा थोड़े हो जाते हैं कई बार, तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत वहाँ है।
2: और शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है स्मॉल कैप?
0: नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी ठीक नहीं है आज की डेट में। यू नीड टू बी पेशेंट एज आई सेड अर्लियर इन मार्केट, इन द मार्केट गेम टुडे यू नीड टू बी पेशेंट। अगर आपको अब जैसे अमित जी ने बोला कि म्यूचुअल फंड का पिछले दो साल में समस्या रही है, तो आपको तीन साल की बैलेंस शीट दिखेगी तो अच्छी दिखेगी, लेकिन दो साल में समस्या है। तो म्यूचुअल फंड के लिए चैलेंज है कि मेरे पे ये विश्वास करे जा रहे हैं, तो मुझे अब मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो म्यूचुअल फंड के लिए एक चैलेंज है अपने आप में, यही टेस्टिंग टाइम है सबका।
1: उनको बेहतर प्रदर्शन भी करना है, साथ ही साथ निवेशकों के भरोसे को भी पूरा रखना है। उसके बावजूद अगर हमारा बाजार तकरीबन, अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, लगभग 75,000 के स्तर के आसपास है और निफ्टी अगर ये है, तो इसमें कितनी उम्मीदें आपको भी नजर आती हैं या कितनी संभावनाएं नजर आती हैं? आने वाला कुछ समय हमारा त्योहारी सीजन भी है
0: अभी जी, इसमें निफ्टी का देखें तो एक दायरा ऐसा बना हुआ है
1: जी।
0: अभी हम दायरे के लोअर एंड पे हैं, वो तब अगर ये थोड़ी मिडिल ईस्ट में शांति थोड़ी स्थापित हो जाए,
1: वैश्विक स्थिति से अगर स्पार्क नहीं मिलेगा तो भारतीय बाजारों में तेजी का दौर देखना फिलहाल
0: नहीं, वो दो तीन चीजें चाहिए जो अंग्रेजी बोलते हैं विच मस्ट फॉल इन प्लेस। एक तो ये मिडिल ईस्ट की शांति चाहिए क्योंकि तेल का भाव बहुत खतरनाक लेवल पे चढ़ रहा है
1: जी।
0: अभी फॉर्चुनेटली थोड़ा आज गिरा है, 100 से तो ऊपर ही रहता है अभी कुछ दिनों में, तो समस्या तो है
1: जी।
0: और इन सब के चलते दो तीन चीजें और FIIs को वापिस आना पड़ेगा।
1: चलिए,
0: तो उम्मीद करते हैं ये सब चीजें हो तो फिर मार्केट बढ़ेगी।
2: लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड।
1: चलिए नजर डाल लेते हैं एशिया यूरोपीय बाजार पर। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.3% की बढ़त से बंद हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली गिरावट से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.8% से 1% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। इस बीच यूरोस्टेट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ में महंगाई दर पिछले महीने बढ़कर 3.2% हो गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों को 3.75% के स्तर पर बरकरार रखा।
2: A look at the U.S. markets now. Major U.S. indices ended lower yesterday following the Federal Reserve's decision to increase its interest rate for the first time in over 3 years. The Dow Jones Industrial Average declined 1.2%, the S&P 500 dropped 0.5%, and the Nasdaq Composite ended largely flat with a negative bias. In a unanimous decision, the U.S. Fed raised its target rate for Fed funds by a quarter of a percentage point for the first time since July 2023. To curb the persistent high inflation. The central bank, in its set of quarterly projections, also signaled that another rate hike could occur later this year. Let's hear what Fed Chair Kevin Warsh said in his opening statement of the press conference.
3: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4% in support of the Federal Reserve's dual mandate. Economic activity is expanding at a solid pace. While uncertainty remains elevated, owing in part to geopolitical developments,

0: infrastructure sector. See, good old days you had this development financial institutions. Now, as he rightly said, if you are supposing you have to lay a power grid, or you have to lay set up a irrigation project, you have all those big infrastructure projects need long-term finances, and it is beyond the realm of the banks to provide that kind of financial support. It is through this new kind of a mature market, since our market is mature now, so have the instruments like InvITs, which means, what is InvIT? InvIT is a kind of a pool of funds raised from the investors, and which finds its way into infrastructure development. And likewise, you have municipal bonds, which means rather than depending on the budgetary kind of a support, the municipal, the efficient local urban local bodies can raise funds directly from public, from institutions at a commercial interest rate.
1: Right.
0: And they are called municipal bonds. And invest in, say, sewage plant or whatever is required.
1: In infrastructure.
0: These are the these are the signs of a maturing financial market.
1: And India needs to invest a lot in infrastructure. It is investing also.
0: Definitely.
1: We have a robust infrastructure
0: in
1: place.
0: No, we need to do it. We have to continue it for several years.
1: Yes, yes. Well, in United States, the House of Representatives has passed a broad package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. The move comes as lawmakers look to deprive President Vladimir Putin of the financial resources needed to wage the war against Ukraine. The bill is named after the late Senator Lindsey Graham of South Carolina, who spent more than a year negotiating it. The measure was approved in a 262-159 vote. The measure sanctions Russian officials, banks, and a shadow fleet of tankers that keeps Russian energy moving. It also directs Trump to impose up to 100% tariffs on the top five importers of Russian oil or natural gas, with an exception for countries that import less than 15% of Russia's natural gas exports and have taken significant steps to reduce those imports.
2: भारत अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. विविध स्रोतों के माध्यम से बदलते बाजार के साथ चलना जरूरी है. अमरीकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के पारित होने का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले पर आगे के घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है. मंत्रालय के अनुसार हाल के महीनों में विभिन्न अमरीकी वार्ताकारों के साथ साथ इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई है. द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभावों को भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है. मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय पक्ष ने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अपना दृढ़ संकल्प भी स्पष्ट कर दिया है. बहुत संक्षेप में इन सब चीजों पर भारत की स्थिति सरकार नजर बनाए हुए है और अपनी स्थिति को भी मजबूत करने पर लगी हुई है.
0: ये आप जब ये नहीं तो भारत सरकार ने तो बोल दिया ना कि हम तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम कमिटेड हैं और अपनी चॉइस जो है हम अपनी खुद चूज करेंगे.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है. नई दिल्ली की यशोभूमि में आज सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा उत्पादन स्थल बनने के लिए सभी कदम उठा रहा है. उन्होंने बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है.
3: इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था. जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की. अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे. पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की. कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की. और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुई.
2: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है. उन्होंने कहा कि अब नींव रखी जा चुकी है और हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर 2.0 के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है.
4: So the approach in Semicon 2.0 will be to promote the design companies in a very big way, both the startups as well as the large companies. Large companies would like to get into semiconductor design because the scope is huge now.

0: The opportunities are huge. Startups can bring in innovative solutions which will be liked by the market.
1: प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में, जो प्रधानमंत्री की मंशा है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की जो हमारी इच्छाएं हैं कि सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत को अग्रणी बनाया जाए, कितना सहमत और कितना जरूरी है?
2: बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एआई की सारी रेवोल्यूशन है वो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पे तो डिपेंड कर रही है जी। तो पूरी वैल्यू चेन का बहुत क्रिटिकल पार्ट है, और अगर हमने एआई वैल्यू चेन का हिस्सा बनना है तो अगर हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
1: और हाल ही के दिनों में इनकी बहुत तेजी से डिमांड भी बढ़ी है और इसके दामों में भी बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है।
3: Right, look at the oil prices now. We've talked a lot about them. Now let's get down to it. Global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 3.4% down at $102.17 per barrel in the intraday trade at a time of writing this report. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading 2.7% lower at $99.69 per barrel.
1: नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर। घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.3% की गिरावट से 151,849 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.7% के नुकसान से 229,642 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में अगर मैं चाहूं, डॉलर की स्थिति को देखते हुए और सोने की स्थिति को देखते हुए क्या नजर आता है कि अभी डॉलर और सोने का जो समन्वय है वो कितना और किस दिशा में चलता हुआ नजर आएगा?
2: ये इनकी कशमकश जारी रहती है। डॉलर भी एक अपने आप में एसेट्स है, सोना भी एसेट्स है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अभी सोना जो है एक स्थिरता की तरफ मुझे नजर आ रहा है।
1: चलिए, प्रकाश कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार
3: जी। In Indian stock market, Sensex ends on a flat note. Nifty settles above 23,250. US lawmakers pass package of sanctions targeting Russia and Iran's key economic pillars. New Delhi says India remains firmly committed to ensuring energy security and will continue to do so through diversified sourcing. And country's semiconductor ecosystem is expanding rapidly, opening new opportunities for innovation, investment and growth, says Prime Minister Narendra Modi. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amit Goyal signing off. Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल

उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार बारिश और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित गांवों के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान के साथ सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंक रोधी अभियान में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। अफगानिस्तान ने भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में दिल्ली में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को यह पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण

0: में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। यह कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि यूपीआई ग्राहकों के लिए निशुल्क बना रहेगा। परिचितों को पैसे भेजने पर दुकानदारों के निजी खाते में भुगतान करने या क्यूआर कोड स्कैन कर लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि रेलवे और ईंधन के लिए 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रति लेनदेन 5 रुपये का मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में बिना विकेट खोए 109 रन बना लिए हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said, India is emerging as a reliable destination for global manufacturing and is preparing to meet new challenges. Mr. Modi stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhumi in New Delhi today. The Prime Minister highlighted the growing demand for artificial intelligence, saying the focus is now shifting beyond transistor size to overall system integration, including memory placement and heat management.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने transmission network को भी expand किया है. साथियों, भारत में power infrastructure का यह विस्तार हमारे semiconductor ecosystem के लिए भी एक बड़ी strength है. भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: लेटर एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इवेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड, इंडियाज सेमी कंडक्टर डिजाइन केपेबिलिटीज आर रिकग्नाइज ग्लोबली एंड सेमिकॉन 2.0 विल फोकस ऑन प्रमोटिंग सेमी कंडक्टर डिजाइन कंपनीज इन द कंट्री। ऑल पर्सन टू पर्सन UPI ट्रांजेक्शंस विल रिमेन फ्री रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट। Sources in the government said that UPI will continue to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops or scanning a QR code will remain free of any charges. Sources also said that vendors earning up to 1 lakh rupees per month via UPI QR codes will continue to attract zero charges. They informed that all RuPay debit card linked UPI transactions will also continue to remain free of any charge. As per the sources, around 96% of person-to-merchant, that is P2M UPI transactions, will remain unaffected. However, transactions above 2,000 rupees in essential sectors, such as railways, fuel and others, will attract a flat merchant discount rate MDR of 5 rupees per transaction. Prime Minister Narendra Modi today said, the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards that goal. Mr.

0: কুটি ভাবে দেরি হয়ে যাচ্ছে, বিচ্ছু ছোড়াটা বড় আস্তে চালাচ্ছে।
1: এই গান শুনতে শুনতে সুরের ঘড়ির কাঁটা বলছে সময়টা শেষ, এবং সেই সাথে আমাদের বন্ধুরা অনুরোধ জানাচ্ছেন যে ঘুড়ি যেন আমরা কখনোই ভুলে না যাই, কখনোই যেন আমরা ঘুড়ি ওড়াতে না ভুলি। আর এই গান শুনতে শুনতে চলে যাব বিরতিতে, ফিরছি আবার 9:30 মিনিটে।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে বিশাল শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
3: बीते 1 दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
3: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

0: अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
1: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
4: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के लिए लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
6: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माई भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माई गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने माई गॉव को एक अच्छी पहल बताया।
7: माई जीओवी के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता, बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
5: इस माई गॉव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
8: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद।

0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the scent. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी। इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी। अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की। और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है। और अब ये भी मोहाली और सूरत में 2 और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।

0: চিত্রধ্বনি
1: চিত্রধ্বনি
0: গানে গানে বাজি মাত গানে গানে বাজি মাত।
2: এই সংলাপের পরে কোন গান ছিল সেটাই কিন্তু আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে। আপনি খুঁজতে থাকুন আর আমরা চলে যাই বরং সংবাদ বিরতিতে। ঠিক 11:10 রাজর্ষি আর দেবারতি আবারও ফিরছে গানে গানে বাজিমাতের পরবর্তী তথা শেষ পর্ব নিয়ে।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
4: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
3: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने

0: कभी तो हंसाए।
1: गानेर भीतर दिए आपने सुनछेन गाने गाने बाजी मात, गाने गाने बाजी मात 100.1 FM गोल्डे। गानेर भीतर दिए
2: सुनछेन गाने गाने बाजी मात, आपनारा आछेन गानेर भीतर दिए राउंडे। एबार चले आसि तीन नम्बर प्रश्नेर उत्तरे। শুনেছিলেন অনুগল্প, আর অনুগল্পের সাথে উত্তরের গানটা এবার মিলিয়ে নিন।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने बताया कि कंपनी ने भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक वैध रहेगा। इन दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने अंतरिम आदेश में दोनों गुटों को आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से अलग अलग चिन्ह चुनने और नया पार्टी नाम रखने को कहा है। दोनों गुटों को सुबह तक 3 पसंदीदा नाम और चुनाव चिन्ह बताने होंगे। आयोग ने कहा कि अरूप रॉय और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ रूस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल मॉस्को में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा जनरल सेठ ने रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से 20 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति पुणे जिले के लोनावाला में कैवल्य धाम के गोवर्धन दास सेक्सरिया योग और सांस्कृतिक संश्लेषण महाविद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद वे पुणे के ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले पुणे महोत्सव में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे T20 मैच में 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 221 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 108 और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।